हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 5:58 और ठीक 20 सेकंड हो रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 जुलाई सन 2026। श्रोताओं, आज की हमारी प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। बस कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोस्का दावुका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की, असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केस से मुलाकात की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और पनामा आपसी साझेदारी प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति

संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कल प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए समूह स्वर में मातृवंदना।

श्रोताओं, ये भजन अभी आपने सुना एमएस सुब्बुलक्ष्मी की आवाज़ में। कार्यक्रम में अब सुनिए अगला भजन केएल सहगल की आवाज़ में।

0: AIR
1: न्यूज ऑन AIR।
0: हाँ बेटा, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें तुझे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी बुंदेली माटी की खुशबू की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इस ऐप पर तू सुन सकेगा आकाशवाणी सागर का प्रसारण।
1: अरे वाह माँ, कमाल है।
2: न्यूज ऑन AIR।
3: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आपको जानकारी देंगे आज की प्रसारण सभा के कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर के बाद 6:30 से सुनिएगा श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर होगा रंजना जोगलेकर का। 6:40 से आप सुन सकेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 6:55 से सुनिएगा दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार। सुबह 7 से समय होगा कार्यक्रम सुबह सुबह का। 7:05 से आप सुन सकेंगे कृषि संकेत। 7:10 से भोपाल केंद्र से सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। 7:20 से कार्यक्रम मन चाहे गीत और 7:45 से कार्यक्रम संगीत सरिता। आज सुबह 8 से दिल्ली केंद्र से आप सुनिएगा समाचार प्रभात और 8:15 से कार्यक्रम लोक संगीत। 8:30 से सुनिएगा पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर के अंतर्गत विषय भारतीय रंगमंच एक परिदृश्य। गेस्ट होंगे दीपक राय, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के छात्र, भेंटकर्ता जय शेखर। सुबह 9 से सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। 10 से भोपाल केंद्र से जिले की चिट्ठी और 10:05 से शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रागिनी। 10:30 से सुनिएगा कार्यक्रम आपकी पसंद। 11 से एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण किया जाएगा और विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे। 11:30 से रिले करेंगे हम मुंबई केंद्र से। दोपहर 2:10 से भोपाल केंद्र से सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। 2:15 से दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार। शाम 5 से भोपाल केंद्र से सुनिएगा इस घंटे की सुर्खियां। शाम 5:02 से सुनिएगा कार्यक्रम युववाणी का अनुप्रसारण। शाम 5:30 से सुनिएगा कार्यक्रम संगीत सरिता। शाम 6:30 से सदाबहार गीत। 6:45 से कार्यक्रम लोकरंग। शाम 7 से दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार हम रिले करेंगे और 7:10 से भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार का रिले किया जाएगा। शाम 7:30 से आप सुन सकेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। रात 8 से दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा का अनुप्रसारण हम करेंगे। 8:15 से सुनिएगा कार्यक्रम संगीत सरिता। 8:45 से आप सुन सकेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या का अनुप्रसारण और रात 9 से सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम मन चाहे गीत। 9:30 से मुंबई केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे। 10 से सुनिएगा दिल्ली केंद्र से संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण और उसके बाद मुंबई केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे। रात 11 से सुनिएगा दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और 11:05 से अंग्रेजी में समाचार। आज की प्रसारण सभा का समापन रात 11:10 पर किया जाएगा। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब सम

0: उत्पन्न हुआ।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:30 हुए हैं श्रोताओं। अब सुनिए श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर है रंजना जोगी।

स्वयंभुव मनु से मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई मानी जाती है। महाराज मनु ने दीर्घ काल तक राज्य किया। राजकाज करते हुए बुढ़ापा आ गया, किंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, ये सोच मनु अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राजकाज का भार अपने पुत्र को सौंपा और अपनी रानी शत्रुपा को साथ लेकर वन गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थ नैमिषारण्य को, जहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते थे, मनु शत्रुपा ने अपना निवास स्थान बनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षरों वाले इस मंत्र का जाप उनकी तपस्या का आधार था। आरंभ में मनु दंपति साग फल तथा कंद का अल्पाहार करते थे, फिर फल मूल त्याग कर केवल जल पीकर रहने लगे। मन में मात्र एक उत्कट अभिलाषा कि किसी प्रकार उन परम प्रभु को देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ, गायक स्वर था रंजना जोगलेकर का। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:40 होने को हैं, बस कुछ ही पलों में हाजिर होंगे हम कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज में। डॉक्टर एस ए सीतापुरी ने इस गीत को लिखा है, संगीत अनिल बिस्वास का है। फिल्म का नाम है पहली नजर। ये फिल्म रिलीज हुई थी साल 1945 में।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना मन्ना डे की आवाज़ में। शैलेंद्र का लिखा हुआ ये गीत था, संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का था, फिल्म का नाम था बसंत बहार। कार्यक्रम में आप सुनिए नूरजहां की आवाज़ में बड़ी माँ फिल्म से ये गीत। जिया सरहदी ने इस गीत को लिखा है और संगीत निर्देशन दत्ता कोरगांवकर का है।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने बड़ी माँ फिल्म से सुना, नूरजहां की आवाज़ में। कार्यक्रम में समय को ध्यान में रखते हुए एक और गीत हम शामिल कर रहे हैं। इस गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीत नौशाद का है। तलत महमूद और शमशाद बेगम की आवाज़ में ये गीत है। फिल्म का नाम है प्यासा, माफ़ कीजिए, फिल्म का नाम है बाबुल।

0: श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म बाबुल से तलत महमूद और शमशाद बेगम की आवाज़ में। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा था और संगीत नौशाद का था। एक इसी के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत को हम कर रहे हैं संपन्न। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:55 होने को है। अब आप सुन सकेंगे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार। करते हैं थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः स्वीय त्रिराष्ट्र आधिकारिक यात्रायाः द्वितीय चरणे उत्तर मैसेडोनिया देशं सम्प्राप्तवती। कस्यश्चित् भारतीय राष्ट्रपतेः उत्तर मैसेडोनिया देशस्य एषा प्रथमा आधिकारिक यात्रा वर्तते। राष्ट्रपतिः स्व समकक्षया गोर्डाना सेल्जानोस्का दावकोवा इत्यनया सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति। सा उत्तर मैसेडोनिया देशस्य प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की तथा संसदः अध्यक्षम अफ्रीम गाशी इत्येताभ्यां सह अपि मेलिष्यति। तदनन्तरं सा उत्तर मैसेडोनिया संसदं तथा भारतोत्तर मैसेडोनिया व्यापार मञ्चमपि संबोधयिष्यति। उभय देशौ कृषि औषधोद्योग विज्ञान प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा क्षेत्रेषु आर्थिक सहयोगं इतोपि सुदृढीकर्तुं रुचिं प्रदर्शितवन्तौ। राष्ट्रपति ही सेंट्स पास चर्च इत्यत्र अपि गमिष्यति। ह्यः नवदिल्ल्यां यदा विरोध प्रदर्शनं हिंसायां परिवर्तितः तदा अष्टादशोत्तरैक शततोप्यधिकाः आरक्षकाः व्रणिताः। व्रणितेषु विशेषारक्षक आयुक्तः, संयुक्तारक्षकायुक्तः, अपरायुक्तः, उप आरक्षकायुक्तः, अन्ये च वरिष्ठाधिकारिणः सम्मिलिताः सन्ति। एकस्मिन् वक्तव्ये दिल्ल्याः आरक्षकाः अवदन् यत् विरोध प्रदर्शनसमये प्रदर्शनकारिभिः आक्रामकं हिंसात्मकञ्च आचरणं प्रदर्शितम्। पुनः पुनः पूर्वसूचनाः विधिसम्मतानि निर्देशानि च प्राप्यापि ते विद्रोहं कृतवन्तः। प्रवर्तमानानां निषेधात्मक आदेशानां च उल्लंघनं कृतवन्तः। दिल्ल्यारक्षिबलेन उक्तं यत् प्रदर्शनकारिभिः आरक्षकाणाम् उपरि आक्रमणं कृतवन्तः। आरक्षकाणां प्रशासकीय वाहनान् च भंगं कृत्वा हिंसाम् आचरितवन्तः, येन सार्वजनिक व्यवस्थायाः कृते गंभीरा विभीषिका समुत्पन्नासीत्। बलेन उक्तं यत् अवशिष्ट व्रणितानां आरक्षक कर्मचारिणां चिकित्सा विधि परीक्षणं प्रचलति। दिल्ल्यारक्षिबलेन उक्तं यत् कलह समये प्रायः 60 आन्दोलनकारिणः अपि व्रणिताः जाताः। ते उक्तवन्तः यत् प्रायः 70 प्रदर्शनकारिणः निगडिताः सन्ति, समुचित विधि प्रक्रिया आरब्धा अस्ति। सहैव भारतीय न्याय संहितायाः प्रासंगिकोपबन्धैः अथ अन्य प्रासंगिक विधिभिः च FIR प्राथमिकी इति पञ्जीकृतमस्ति। युक्रेन देशस्य ओडेसा पत्तनात् प्रस्थानावधौ MV गोल्डन लियो इत्यस्यां नौकायां कृताक्रमणस्य भारतेन निन्दा कृता। विदेश मन्त्रालयः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् चत्वारः भारतीयाः नागरिकाः दुर्दैववशात् मृत्युमुपगताः। एकः गंभीरावस्थायां चिकित्सालये उपचाराधीनः अस्ति। मन्त्रालयेन उक्तं

0: यत् उपलब्ध सूचनानुसारं घटना समये पञ्च भारतीय नागरिकैः सह सप्तदश चालकदलस्य सदस्याः आसन्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः नवदिल्ल्यां पनामादेशस्य विदेशमन्त्रिणा हेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। ह्यः जाते उपवेशने डॉ जयशंकरः लैटिन अमेरिका कैरिबियन क्षेत्रयोः प्रवेशद्वाररूपेण पनामादेशेन सह भारतस्य सम्बन्धस्य गहनतायाः महत्त्वम् अधोरेखितवान्। व्यापारोद्योग विकास स्वास्थ्य कृषि शिक्षा आंकिकीय सहयोगादीनां प्रगति विषये उभौ विस्तृतं विमर्शं कृतवन्तौ। बहुपाक्षिक मञ्चेषु सहभागित्वस्य विषये अपि तौ अवदताम्। प्रशासनेन संसूचितं यत् अस्य वर्षस्य जून मास पर्यन्तं देशे प्रायः 51,55,55 कोटि उपयोक्तारः यूपीआई इत्यनेन सह सम्बद्धाः जाताः इति वार्ताः।
1: अभी आप सुन रहे थे संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है दैनिक वैचारिक कार्यक्रम सुबह सुबह। नमस्कार, मैं हूँ अदिति। श्रोताओं, आजकल एक शब्द बहुत सुनाई देता है, प्रैंक। ये शब्द सुनते ही मन में सबसे पहले एक हल्की सी शरारत का चित्र बनता है। शरारत ऐसी जिसमें कुछ क्षणों की हैरानी हो, फिर दोनों ओर मुस्कान आ जाए, जहाँ घटना समाप्त होने के बाद कोई शिकायत ना बचे, केवल एक याद रह जाए। लेकिन समय के साथ इस शब्द का अर्थ भी बदलता हुआ जान पड़ता है। अब कई बार किसी की घबराहट, किसी की परेशानी, किसी की असुविधा और कभी कभी किसी के सम्मान की कीमत पर भी जो कुछ होता है, उसे एक ही शब्द में समेट दिया जाता है, प्रैंक। किसी की परेशानी किसी और का मनोरंजन कैसे बन सकती है या कैसे बन जाती है? आज हमारे पास ऐसे साधन हैं जिनसे दूर बैठकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। ये सुविधा अपने आप में अद्भुत है, लेकिन हर सुविधा अपने साथ एक जिम्मेदारी भी लेकर आती है, क्योंकि किसी भी शक्ति का मूल्य केवल इस बात से नहीं तय होता कि उससे क्या किया जा सकता है, उसका मूल्य इस बात से तय होता है कि उसका उपयोग किस भावना से किया जा रहा है। कभी कभी हम किसी घटना का केवल वो हिस्सा देखते हैं जो हमें दिखाई देता है, लेकिन उस दृश्य के बाहर भी एक जीवन होता है। किसी की रोजमर्रा की भागदौड़ होती है, किसी की जिम्मेदारियां होती हैं, किसी की चिंता होती है, किसी का पूरा दिन उस एक छोटी सी घटना से प्रभावित हो सकता है जिसका हमें केवल मनोरंजक हिस्सा दिखाई देता है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति में खड़ा हो और उसे ये भी समझना है कि उसके साथ क्या हुआ है, तो उस क्षण उसकी मनः स्थिति कैसी होगी? और यदि उसी क्षण कोई दूसरा व्यक्ति उसे केवल मनोरंजन की दृष्टि से देख रहा हो, तो प्रश्न केवल उस घटना का नहीं रह जाता, प्रश्न ये हो जाता है कि क्या हम धीरे धीरे दूसरों की भावनाओं को महसूस करने की क्षमता खोते जा रहे हैं? हर युग की अपनी भाषा होती है। हमारे समय की भाषा में तकनीक है, गति है, नए विचार हैं और अनगिनत अवसर हैं। ये सब स्वागत योग्य हैं, लेकिन इन सब के बीच यदि संवेदना पीछे छूटने लगे, तो हमें थोड़ा ठहर कर सोचना चाहिए, क्योंकि किसी भी नई चीज़ का मूल्य इस बात से नहीं बढ़ता कि वो कितनी चौंकाने वाली है, उसका मूल्य इस बात से बढ़ता है कि उससे किसी का जीवन कितना सहज होता है। एक छोटा सा प्रश्न हम सब अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या हम जो कर सकते हैं वो हमें करना भी चाहिए? हर क्षमता का उपयोग आवश्यक नहीं होता, हर अवसर का लाभ उठाना भी आवश्यक नहीं होता। कई बार सबसे अच्छा निर्णय वही होता है जहां हम किसी को असुविधा पहुंचाने की अपनी क्षमता का उपयोग ही ना करें। शब्द बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, अर्थ भी बदल जाते हैं, लेकिन एक बात कभी नहीं बदलनी चाहिए, हमारे भीतर का मनुष्य। यदि हमारी हंसी किसी और की विवशता पर खड़ी हो, तो वो हंसी बहुत देर तक साथ नहीं रहती, लेकिन यदि हमारे कारण किसी अनजान व्यक्ति का दिन थोड़ा थोड़ा आसान हो जाए तो उसका प्रभाव कहीं दूर तक जाता है श्रोताओं। शायद इसलिए मनोरंजन की भी एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है, और जहाँ किसी दूसरे की गरिमा, उसकी रोजी, उसका मन या उसका सम्मान दांव पर लगने लगे, वहाँ रुक जाना ही सबसे अच्छा निर्णय होता है। क्योंकि किसी को चौंका देना आसान है, लेकिन किसी के जीवन को थोड़ा आसान बना देना कहीं अधिक सुंदर है। विचार कीजिएगा श्रोताओं। इन्हीं विचारों के साथ कार्यक्रम सुबह सुबह में बस इतना ही।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:05 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कृषि संकेत। विषय है MP पशुपालन विभाग एवं डेयरी द्वारा गोरस ऐप के फायदे। वाचक स्वर है डॉक्टर BK शर्मा का।
4: पशुपालक साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा विकसित गोरस मोबाइल ऐप एक डिजिटल पहल है, जो कि पशुपालकों को गाय और भैंसों के लिए वैज्ञानिक व संतुलित आहार की सटीक जानकारी देकर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए मदद करता है। इस ऐप को आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी लिंक भी हम आप लोगों तक उपलब्ध करा देंगे। इसकी विशेषताएं मैं आपको बताना चाहता हूं। गोरस ऐप की प्रमुख विशेषताएं जो हैं कि संतुलित आहार की जानकारी आप घर बैठे अपने मोबाइल पर निकाल सकते हैं कि आप अपनी गाय को क्या क्या चीज दे रहे थे, दुग्ध उत्पादन क्या है, सब उसमें आपको नाम डालना पड़ेगा, आपकी पशु की उम्र डालना पड़ेगी, वजन डालना पड़ेगा, आप क्या क्या आहार दे रहे हैं, कितना दूध देती है एक दिन में, ये सब डालने के बाद में उसमें फिर बहुत सारे संतुलित आहार हैं, उस पर आप टिक करते जाइए कि कौन सा आहार आप कितनी मात्रा में दे रहे हो। आखिरी में उसका रिजल्ट निकल आएगा कि आप कम दे रहे हैं या ज़्यादा दे रहे हैं या उचित दे रहे हैं। उसके बाद हम संतुलित आहार की जब जानकारी लेते हैं तो उसमें पशु की नस्ल, वजन, दूध की मात्रा, गर्भावस्था के आधार पर यह ऐप सटीक और वैज्ञानिक तरीके से बताता है कि पशु को क्या, कब और कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हर एक्सपर्ट आपको आपके घर तक ये बताने नहीं आ सकता, लेकिन ऐप की ये बहुत अच्छी सुविधा है। दूसरा एक चीज़ और बताएं कि स्थानीय चारे का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, तो इसमें 28 से अधिक प्रकार के स्थानीय चारों की विस्तृत जानकारी है कि किस चारे में कितना प्रोटीन है, कितना फाइबर है, हर चीज़ की आपको जानकारी मिलेगी। फिर आपको कैलकुलेटर मिलता है, तो उसके माध्यम से आपकी लागत कम कैसे की जा सकती है, कि आप किस चीज को किस चीज से बदल सकते हैं। अगर आप महंगा दाना आपके क्षेत्र में मिल रहा है तो आप किस चारे से उस दाने को घटा सकते हैं, तो इस आधार पर आपको आपकी लागत कम हो सकती है। और मौसम के अनुसार आपको चारे का उपयोग भी और गर्भावस्था के अनुसार सुझाव मिलेगा कि आप गर्मी के मौसम में पशु को कैसा चारा पानी देना है या क्या क्या आपको बदलाव करना है, ये आपको इस ऐप के माध्यम से मिल जाएगा। ऐप एक और आपको बहुत अच्छी सलाह देता है कि नस्ल विशिष्ट के लिए आपको मार्गदर्शित करता है कि गिर, साहिवाल, थारपारकर, मुर्रा, भदावरी जैसी प्रमुख नस्लों के लिए अलग अलग सटीक मार्गदर्शन इस पर उपलब्ध है। इस ऐप में नस्ल सुधार और स्वास्थ्य सलाह भी ऐप के माध्यम से आपको बार बार हीट में आना है, गर्भधारण न करने जैसी समस्याओं के समाधान भी इस ऐप पर उपलब्ध हैं। और बिना इंटरनेट के संचालन है। इसकी सबसे सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक बार डाउनलोड हो जाने के बाद आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं भी है तब भी आपका ये पूरा कार्य करता है, और पूरी तरह से ये हिंदी भाषा में है जिससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालक इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। और डेयरी में या पशुशाला में आपके आर्थिक लाभ का अनुमान भी लगाया जा सकता है कि क्या क्या उपाय करेंगे तो आपकी डेयरी फायदे में जाएगी।

0: या आपको कैसे कैसे आपको फायदा हो सकता है। तो यह गोरस ऐप आप लोग अवश्य डाउनलोड करें। ये पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में बहुत अच्छा ऐप बनाया है पशुपालन विभाग ने। इसका उपयोग करके सभी पशुपालक लाभान्वित हों। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि संकेत। विषय था एमपी पशुपालन विभाग एवं डेयरी द्वारा गोरस ऐप के फायदे। वाचक स्वर था डॉक्टर बी के शर्मा का। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:10 होने को है, बस कुछ ही पलों में सुनिएगा भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंची, यहां भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को करेंगी संबोधित। मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता सहित 14 अधिनियम किए गए पेश। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा लागू कानूनों के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी कार्य होंगे। और राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश। अब समाचार विस्तार से। तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच चुकी हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोडाना सेल्जानोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की, विधानसभा अध्यक्ष अफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की विधानसभा को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। दोनों पक्ष कृषि, फार्मास्यूटिकल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, ITES जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आर्थिक संबंधों को गहरा करने में रुचि रखते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू सेंट स्पास चर्च का दौरा भी करेंगी और मैसेडोनिया के प्रख्यात क्रांतिकारी गोसे दिलचेव की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। कल से प्रारंभ हुए राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र में पहले दिन राज्य सरकार ने सदन में समान नागरिक संहिता यूसीसी सहित 14 विधेयक पेश किए। यूसीसी पर चर्चा आज कराई जाएगी। समान नागरिक संहिता के साथ मध्य प्रदेश निरसन विधेयक, मध्य प्रदेश अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं विधेयक, मध्य प्रदेश श्रम शक्ति संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता संशोधन विधेयक सहित कई अन्य विधेयक पेश किए गए हैं। मंत्री गौतम टिटवाल ने मध्य प्रदेश पंचायती राज और ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश 2026, मध्य प्रदेश उपकर संशोधन अध्यादेश 2026 सदन के पटल पर रखे। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो गया। 25 दिन चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होंगी। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ.

0: सांसद मांडविया ने कहा कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर देते हुए डॉ. मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। इस कदम से अनुसंधान का कार्य सुगम बनाया गया ताकि उन्हें आम जनता के लिए सुलभ किया जा सके। गुना जिले में अगस्त माह के पहले सप्ताह में निशुल्क थैलेसीमिया जांच और बोन मैरो ट्रांसप्लांट परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा ये कदम उठाया गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा लागू नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी कार्य होंगे। कल पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान का निरंतर क्रियान्वयन होता रहे। हाल ही में अभियान के अंतर्गत नशे से दूरी है जरूरी स्लोगन को लोकप्रियता मिली है और नागरिकों ने नशा मुक्ति की शपथ ली है। उन्होंने कहा कि राजधानी से लेकर जिलों तक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और पुलिस बल आने वाले त्योहारों और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की आवश्यक तैयारी करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में नागरिकों के लिए शांति व्यवस्था और सद्भाव के वातावरण को बनाए रखने के लिए पुलिस बल में पर्याप्त वृद्धि के निरंतर प्रयास कर रही है। सरकार ने बताया है कि इस साल जून तक 55 करोड़ 49 लाख से अधिक उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई के जरिए 24,162 करोड़ लेनदेन हुए, जिनका कुल मूल्य 314 लाख करोड़ रुपए रहा। उन्होंने बताया कि यूपीआई लेनदेन को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कई कदम उठाए हैं। इनमें धोखाधड़ी रोकने के लिए जोखिम आधारित लेनदेन सीमा, मोबाइल नंबर में अनाधिकृत बदलाव और SMS आधारित प्रमाणीकरण के दुरुपयोग पर रोक तथा यूपीआई एप्स के लिए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस साल के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. रोहित तिलक ने इसकी घोषणा की। प्रदेश में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लाइसेंस और नवीनीकरण से संबंधित आवेदनों के त्वरित निराकरण और चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनाने के लिए गृह विभाग ने पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह सचिव कृष्ण बेड़ी देसावतु ने बताया कि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अधिनियम 2005 के अंतर्गत नए लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदनों का निराकरण निर्धारित 60 दिन की समय सीमा में और लाइसेंस नवीनीकरण के आवेदनों का निराकरण 30 दिन की समय सीमा में किया जाना है। इसी प्रकार जांच के बाद प्रतिवेदन 15 दिन के भीतर संबंधित कार्यालय भेजने के भी निर्देश दिए हैं। ओमान के मस्कट में कल FIH यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप 2026 में भारतीय जूनियर पुरुष और महिला टीमों ने अपने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। भारतीय टीमें पुरुष और महिला वर्ग के एलीट पूल में हैं। भारतीय महिला टीम ने प्रतियोगिता के पहले दिन कजाकिस्तान के खिलाफ 8-3 से जीत हासिल की, जबकि पुरुष टीम ने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से हराया। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में एक बार फिर बारिश का दौर प्रारंभ हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में बारिश दर्ज की गई। प्रदेश के करीब 90% हिस्से में 23 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भिंड, मुरैना, अनूपपुर, बालाघाट, छतरपुर, टीकमगढ़ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि भोपाल, इंदौर सहित नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। प्रदेश में निजी सुरक्षा एजेंसियों की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि गुरुजन सदैव पूजनीय और वंदनीय हैं। गुरु ही हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान विज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। मध्यप्रदेश विधानसभा की समिति कक्ष में आगामी गुरु पूर्णिमा महोत्सव के आयोजन की तैयारियों के संबंध में बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को बढ़ावा देते हुए पुरातन भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय गुरु शिष्य परंपरा के आदर्शों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली गुरु पूर्णिमा पर प्रदेश व्यापी महर्षि संदीपनी श्रद्धा पर्व का आयोजन भी किया जाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉ कैलाश जाटव आज से 2 दिवसीय अशोकनगर जिले के दौरे पर रहेंगे। मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग की अध्यक्षता में श्री पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में श्रावण माह की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। नर्मदापुरम जिले में आकाशीय बिजली से होने वाली जनहानि रोकने के उद्देश्य से दामिनी ऐप को लेकर विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। खंडवा में 6 वर्ष तक के बच्चों के समग्र विकास के लिए नींव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 7:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। आज के इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे आपकी रेडियो साथी अदिति के साथ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पहला गीत हम शामिल कर रहे हैं आप सभी की फरमाइश पर। व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजे हैं आप सभी ने लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी, अंबाला से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल, उत्तर प्रदेश दूल्हापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह। आप सभी की फरमाइश पर सुनिए नास्तिक फिल्म से कवि प्रदीप की आवाज़ में ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
3: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
4: ये मेरी नहीं, 287 मेरी चाय की खुशबू है। तन मन जगाए,
2: बात बन जाए।
4: 287 मेरी चाय।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। पहले फरमाइशकर्ताओं के नाम आपसे साझा कर रहे हैं, आप सभी ने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजे हैं। राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी। बिहार किशनगंज से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया और कीर्ति भारती। संजय सुरेश, सुनील, उषा, रिंकी, विशाखा अगरिया गांव से। श्रीरामपुर से डी अशोक कुम्हार, अविका, जीविका, सानू, अर्चना। कोयते वस्ती पुनावले से संजय सोनवने, अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और साईशा सोनवने। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ और शौर्य नामदेव। आप सभी की फरमाइश पर सुनिए फिल्म राजा रानी से लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत। इस गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत राहुल देव बर्मन का है।
4: मैं अकेली कहाँ जाऊँ मामी?
5: बाहर में जा। तेरे दोबारा यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? निकल जा यहाँ से।
4: मामा जी,
5: मैं कहती हूँ निकल जा। मामा जी के बच्चे, निकल, निकल यहाँ से, फौरन निकल, तबाह यहाँ से। मामा जी के बच्चे ले जा अपनी इच्छी से, तबाह यहाँ से, मजबूत करेंगी। मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। आप सभी ने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजे हैं। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोड़ाना। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। बरका काना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा। अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई, हीरामन शेंडे और प्रणय प्रसिद्धि। परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश और इनके सभी परिवार के सदस्य। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूडत, नेहा जैन, दीपक मयंक, चेतन नाहटा और दीक्षा और कुश मूडत। आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं ठोकर फिल्म से मुकेश की आवाज़ में गीत। इस गीत को लिखा है साजन दहलवी ने और संगीत निर्देशन श्याम जी, घनश्याम जी का है।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब अगली फरमाइश आपको सुनवा रहे हैं। आप सभी ने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजे हैं। डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित लकी तानिया। महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और ओम कुमार। जमशेदपुर झारखंड सुपाई साई गांव से देवेंद्र तांती, राकेश, प्रकाश, निशा, रेशमा दीपाली और देबेन। रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह और ऋषभ सिंह। बिनेका सागर से बलराम सेन, अरविंद सेन, रेखा, रविंद्र, संगीता, महेंद्र, रामदेवी, सुरेंद्र, नंदिनी, रिया, गौरव, राज, आर्यन, कौशल और दीप्ति। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, बेबी, सिया। जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव। भवरपुर छत्तीसगढ़ से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू नेहा, जगदीश देवांगन। छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के और यज्ञेश घोड़के। पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम और कुसुम नेताम। शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, प्रियांशी। आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रही है आंसू बन गए फूल, इस फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में गीत, गोविंद मुनीस की शब्द रचना है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम था आंसू बन गए फूल। इस गीत को लिखा था गोविंद मुनिस ने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत तैयार किया था, आवाज़ थी आशा भोसले और किशोर कुमार की। इसी के साथ कार्यक्रम मन चाहे गीत को अब हम कर रहे हैं संपन्न।

0: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:45 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

श्रोताओं, ये गज़ल अभी आपने सुनी घनश्याम वासवानी की आवाज़ में। सईद राही ने इस गज़ल को लिखा था, संगीत जगजीत सिंह का था। कार्यक्रम में आप सुनिए दिलराज कौर की आवाज़ में ये गज़ल। मोहसिन नकवी ने इस गज़ल को लिखा है, संगीत गुलाम अली का है।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब अगली गजल आपको सुनवा रहे हैं सुधा मल्होत्रा की आवाज़ में। सुदर्शन फाकिर ने इस गजल को लिखा है और संगीत जगजीत सिंह का है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन

0: लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
3: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
1: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा

0: देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीना इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
3: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है।

0: सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में एनएचपीसी जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के समरडुंग में एनएचपीसी प्रोजेक्ट पर घटी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 है। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, एनएचपीसी के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों और इराक में 1 सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमेरिकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है, जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के 3 दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में FIH यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो, SIT के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जांच नई SIT करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और CJP प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद दीपके ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने संपादकीय में इसी खबर का उल्लेख किया है, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौती का संकेत है, जिसमें संवाद का स्थान धीरे धीरे टकराव लेता जा रहा है। ये निर्विवाद है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है कि असहमति को स्थान मिले और सरकारें जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील हों, लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, एथेनॉल से कार ही नहीं चलेगी, चूल्हा भी जलेगा। LPG के अलावा एथेनॉल को रसोई ईंधन का विकल्प बनाने की तैयारी, सितंबर तक नीति का मसौदा तैयार कर सकती है सरकार।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिलियानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन

चीन की ओडिशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए ये भजन मालती सेन की आवाज में।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब सुनिए हल्लन भाई और साथियों की आवाज में ये चेतावनी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरण यादव की आवाज़ में ये लोकगीत, और इसी के साथ कार्यक्रम लोक संगीत को अब हम कर रहे हैं संपन्न।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। विषय है भारतीय रंगमंच एक परिदृश्य। गेस्ट दीपक राय, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के छात्र। भेंटकर्ता जय शेखर।

0: नमस्कार श्रोताओं, पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जयशेखर। श्रोताओं, हमारे इस कार्यक्रम की विशेषता यही है, खासियत यही है कि हम ऐसे मेहमानों से आप लोगों को मिलवाते हैं जो आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें बताते हैं, नई बातें बताते हैं। कुछ ये कार्यक्रम आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोगों के संदेशों से ये पता चल रहा है। तो आज की इस श्रृंखला में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं रंग कर्म में एक अलग स्थान रखने वाले और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वितीय वर्ष के छात्र दीपक राय से। दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: हमें ये बताएं दीपक कि जब आप सागर में रंग कर्म कर रहे थे तब और अब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी राष्ट्रीय पटल पर आप अपने आप को देख रहे हैं, तब कैसा महसूस हो रहा और क्या अंतर समझ में आया आपको?
1: जब मैं सागर में रंगमंच कर रहा था तब भी मैं बहुत लगन से काम कर रहा था, कहीं ना कहीं इसी का परिणाम है कि मैं वहां पहुंच पाया।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन वहां पे चीजें प्रोफेशनल मिल रही हैं।
0: हाँ।
1: जैसे मूवमेंट क्लास है, म्यूजिक की क्लास है।
0: हाँ।
1: वॉइस की क्लास है जो
0: हाँ।
1: कि सागर शहर में उपलब्ध नहीं।
0: हाँ।
1: तो ये इन चीजों में बहुत फर्क आ जाता है। तो एज एन आर्टिस्ट भी और एज एन मतलब इंसान भी आपकी पर्सनालिटी में बहुत ग्रो करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। रंग कर्म तो रंग कर्म है, बस ये है कि वहां पर आपको लगातार 24 घंटे रंग कर्म करना है, ये भी एक हो जाता है।
1: हाँ, लेकिन वहां पे पर्याप्त आपकी नींद का भी ध्यान रखा जाता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: क्योंकि वहां पे जैसे मैंने अभी क्लास की थी अब्दुल लतीफ खटाना सर के साथ प्रोडक्शन किया था मैंने विरासत महेश एलकुंचवार का, तब मुझे प्रॉब्लम गई। तब मैं बहुत ज्यादा मतलब था क्योंकि मुझे लीड कैरेक्टर मिला था।
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा।
1: मुझे ये था कि ये कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छे से करना था, तो मैं कम सोता था।
0: आपने अपने ऊपर दबाव ले लिया।
1: हाँ, तो मैंने बहुत प्रेशर ले लिया।
0: हाँ।
1: तो फिर सर ने बताया कि एक अच्छे अभिनेता के लिए नींद बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। और दीपक, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि एक अच्छे अभिनेता नहीं, हर एक इंसान के लिए कम से कम जो आज के शोध कह रहे हैं कि 6 से 7 घंटे 8 घंटे नींद लेना बहुत जरूरी है।
1: हाँ।
0: क्योंकि तनाव वहीं से शुरू हो जाता है जहां से हमारी नींद कम हो जाती है। अच्छा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जब आप पहुंचे तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? कि सबसे पहली समस्या आती है भाषा संबंधी।
1: हाँ।
0: कि सिलेबस सारा अंग्रेजी के माध्यम में होता है और टीचिंग भी ज्यादातर इंग्लिश में होती है, और इसके अलावा कौन कौन सी समस्याओं का सामना किया?
1: थोड़ी बहुत भाषा को लेके गई, बाकी मैंने टीचर को बोला तो उन्होंने फिर मुझे हिंदी में पढ़ाया।
0: अच्छा अच्छा।
1: और मेन पर्पस उनका हिंदी में पढ़ाने का है।
0: हाँ।
1: लेकिन अब कुछ थ्योरी ऐसी हैं जो फॉरेन थ्योरी हैं उनको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है।
0: हाँ।
1: क्योंकि कुछ का अनुवाद ही नहीं हुआ है।
0: हाँ।
1: उसमें हिंदी में।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ये वजह भी है। तो सर मैंने फिर कोशिश की समझने की, आजकल मोबाइल है।
0: हाँ।
1: पहले के जमाने में नहीं था, तो गूगल ट्रांसलेट है।
0: हाँ।
1: या चैट जीपीटी है, उससे मैंने इंग्लिश को हिंदी करके पढ़ा।
0: क्या बात है, बहुत
1: तो ये सब चीजें आई,
0: यानी एआई का बहुत सहारा ले रहे हैं। एआई का दखल यानी हर फील्ड में हो चुका है।
1: एआई का हो चुका है क्योंकि जब आपको भाषा नहीं आती, जैसे मेरे कोई मणिपुरी दोस्त हैं, अगर उनको मुझे उनसे मुझसे मुझे अगर मुझे उनसे बात करनी है तो फिर मैं उसको एआई के माध्यम से ही कर पाता हूँ।
0: अच्छा,
1: क्योंकि
0: अच्छा।
1: कई बार उनको भी हिंदी नहीं आती।
0: हाँ, हाँ।
1: और मुझे मणिपुरी नहीं आती, तो फिर ऐसे ट्रांसलेट कर।
0: अच्छा, पूरा शेड्यूल क्या होता है आपका दिन भर का? सुबह से कितने टाइम क्या उठना होता है, फिर जब तक सो नहीं जाते तब तक का थोड़ा शेड्यूल हमें बताएं।
1: शेड्यूल ऐसा होता है सर कि सुबह 7:30 पे क्लास होती है।
0: हाँ।
1: 7:30 से 9 बजे तक मॉर्निंग क्लास होती है, जिसमें मूवमेंट होता है, पूरा वार्म अप होता है, पूरा बॉडी पे काम होता है।
0: हाँ।
1: उसके बाद 9 बजे से 10 बजे तक लंच होता है।
0: 9 से 10 तक।
1: हाँ, ब्रेकफास्ट।
0: हाँ।
1: फिर उसके बाद 10 बजे से 1 बजे तक क्लास होती है, थ्योरी की क्लास लगती है, जब मैं फर्स्ट ईयर में था। और अगर प्रोडक्शन रहा तो फिर 10 बजे से प्रोडक्शन शुरू हो जाता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: और फिर 1 बजे से 2 बजे तक लंच होता है। और फिर उसके बाद 1 बजे से आपका 4 बजे तक क्लास होती है, फिर 15-20 मिनट का ब्रेक मिलता है।
0: हाँ।
1: फिर उसके बाद क्लास होती है तो 8 बजे छुट्टी हो जाती है।
0: 8 बजे तक क्लास चलती
1: है। कभी कभी और कभी कभी 6 बजे तक भी चलती है, जैसे मतलब क्लास लगी, अगर प्रोडक्शन है तो लंबा खींचती है।
0: तो वित्तीय सहायता भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आपको देता है?
1: हाँ, 9,500 रुपए स्कॉलर्स देते हैं।
0: हाँ,
1: तो उसमें क्या होता है कि आपका हॉस्टल का चार्ज भी रहता है, मेस का चार्ज होता है, सब होता है।

0: अच्छा अच्छा आपके हाथ में 5-7 हज़ार रुपए आ ही जाते हैं।
1: हाँ, जो पर्याप्त है आपके लिए। जी,
0: और रहने की सुविधा है। तो एक अभिनेता के लिए ही चाहिए।
1: बिल्कुल सही। जब दीपक अपने आपको कहाँ देखते हैं, आप किस फील्ड में जाता हुआ आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब सेकंड ईयर में आ चुके हैं आप, और सेकंड ईयर तक आते आते तक तो बहुत हद तक निश्चित हो जाता है कि हमें किस फील्ड में जाना है। डायरेक्शन की तरफ आपका रुझान होता है, सेट डिजाइन की तरफ हो जाता है, कोरियोग्राफर, अभिनेता तो हैं ही आप, तो कहाँ लग रहा है आपको, आप कहाँ अपने आप को बहुत ही ज्यादा सहज महसूस करते हैं?
0: सर, मैं अभिनय फील्ड में जाना चाहता हूँ, मैं अभिनय करना चाहता हूँ।
1: अच्छा, अच्छा।
0: मैं डिजाइन डायरेक्शन में मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं।
1: तो
0: मेरा पहले से ही तय था फॉर्म भरने के पहले कि मुझे अभिनय ही करना है।
1: अच्छा अच्छा, तो अभी कौन कौन से नाटकों में आपने तैयार किए हैं?
0: मैंने सर मोलियर का साइकी किया था फर्स्ट ईयर में, और उसके बाद एक माइस ऑफ मैन सिल्वर किया था विक्रम शर्मा सर के साथ, और फिर सर मैंने महेश कुंचवार का नाटक विरासत किया अब्दुल लतीफ खटाना सर के साथ, मैंने बताया जैसा, और मैंने क्लासिकल किया उत्तर रामचरित सुरेश अनगली सर हैं उनके साथ।
1: अच्छा दीपक, ये बताएं हमें कि ऐसी कौन सी चीज रही आप में, आपने कौन सी तैयारी की, और किस गुरु के मार्गदर्शन में, किस व्यक्ति का हाथ रहा आपके ऊपर कि आप सही डायरेक्शन में गए और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सिलेक्ट हुए? क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि आज भी जब से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना हुई है, वहां पर सिलेक्ट होने की प्रोसीजर जो होती है, उनके मापदंड क्या हैं, ये आप ही बता सकते हैं।
0: सर, इसके पीछे मेरी बहुत मेहनत है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि मैंने नाटक शुरू जब किया था तो बहुत मुश्किल होता था रोल मिलना भी, और फिर मुझे संदीप सर हैं, तो उनसे मुझे मार्गदर्शन मिला। पहली बार मुझे रंगमंच में आने का मौका मिला। मैं आना बहुत पहले से चाह रहा था। तो फिर मैंने वहां उनसे मार्गदर्शन लिया, उन्होंने मुझे बताया, वर्कशॉप लगाए हुए थे, तो उस वर्कशॉप में फिर मैंने वर्कशॉप की 1600 रुपए वो वर्कशॉप की। उसके बाद मैंने थिएटर शुरू किया अलग अलग जगह जाके, एडमिशन थिएटर ग्रुप में जगदीश शर्मा के निर्देशन में काम किया, और मैंने नुक्कड़ नाटक भी किया, और तथागत थिएटर ग्रुप था वहां काम किया। मतलब हर जहां काम हो रहा था मैं वहां काम कर रहा था, मुझे कोई मतलब नहीं था कौन ग्रुप है क्या है, मुझे काम करना था। मुझे गोविंद नामदेव सर के साथ काम करना था, लेकिन मुझे बैक स्टेज काम करने का मौका मिला उनके साथ भी। तो सर मुझे मतलब
1: सभी लोगों का मिला जुला
0: का, हाँ।
1: इंटरव्यू में आपसे ऑडिशन हुआ तो उसमें क्या क्या पूछे गए सवाल, कुछ याद है आपको?
0: हाँ सर।
1: और किस चीज से प्रभावित हुए वो लोग?
0: वो मैंने एक सर मेरे ह्यूमर से बहुत प्रभावित हुए।
1: अच्छा,
0: क्योंकि
1: अच्छा।
0: उन्होंने पूरी स्पीच सुन ली मेरी, और फिर मुझसे गाना गाने को बोला, मैंने गाना गाया, उनको पसंद आया, और फिर उनने कहा कि तुम चाय बेच के बताओ खुद से, और अलग अलग तरीके से चाय बेच के बताओ, 4-5 अलग अलग तरीके से। तो फिर मेरा पहला इंटरव्यू वहां मेरा सिलेक्शन हुआ मुझे।
1: अच्छा अच्छा, कौन कौन थे आपके उसमें?
0: उसमें अवतार साहनी सर थे, टीकम जोशी सर थे, और 3 जज और थे जिनको मैं जानता
1: हूँ। अच्छा अच्छा,
0: वो भी मुझे अभी पता चला कि
1: शुरुआत से ही हमने आपको देखा दीपक, आप बहुत ही सहज और सरल व्यक्ति रहे हैं, अभी भी वैसे हैं, और हमें लगता है कि किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने में उसकी सरलता, उसकी सहजता और चीजों को आसानी से समझने की कला, ये बहुत मायने रखती है, और ये सारी चीजें, ये सारी खूबियां आप में हम देखते हैं। जब तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सिलेक्ट नहीं हुए थे तो रंगमंच की परिभाषा क्या थी, लेकिन 2 साल में अब रंगमंच को आप कैसे देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं?
0: रंगमंच को मतलब एक पहले ये परिभाषा थी जब मैं यहाँ रहता था कि पढ़ाई नहीं करना है तो रंगमंच कर लेते हैं। लेकिन जब वहां मेरे 2 साल बीत गए, और मैं जब जैसे ही मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पहुंचा, तो मुझे एहसास हुआ कि पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं पढ़ाई से बहुत भागता था।
1: फिर
0: वहां पे अगर पढ़ोगे नहीं तो फिर आप
1: पिछड़ जाओगे
0: और आप अभिनय भी नहीं कर पाओगे। आप एक टाइप का अभिनय करोगे, या आपकी इमेजिनेशन पावर नहीं होगी, कल्पना शक्ति नहीं होगी, पढ़ने से आप में बहुत सारी चीजें आएंगी। तो एक शिक्षित अभिनेता होना बहुत जरूरी है, और एक अभिनेता को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, और ये सोच के कोई ना है कि इस फील्ड में पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसमें और पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको पूरी दुनिया जहान को, अलग अलग कल्चर को, लोगों को समझने के लिए तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है।
1: तो इतना पढ़ने के बाद अब हम जानने चाहते हैं कि दीपक ने कौन सी परिभाषा गढ़ी है रंगमंच की। दीपक क्या कहते हैं कि रंगमंच क्या है?
0: रंगमंच मतलब बहुत लगन से काम करने की एक जगह है, अगर आप में लगन है तो इसमें आए।
1: अच्छा अच्छा,
0: मेरी परिभाषा ही है।
1: हाँ चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब दीपक, हम चाहेंगे कि कोई ऐसा संवाद जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आपने तैयार किया हो और आपको उसमें बहुत ही सराहना मिली हो, तो हमारे श्रोताओं को जरूर सुनवाएं आप।
0: विरासत नाटक है जो मैंने आपको बताया था, महेश्वर कुंचवार को, उसकी एक स्पीच है जब उसके चाचा विदेश से आते हैं पराग के, 10 साल में एक पोस्ट कार्ड भेज दिया तो जिम्मेदारी खत्म हो गई। और उस पोस्ट कार्ड में भी क्या, अपनी ही तारीफ, हमारे बेटे को स्कॉलरशिप मिल गई है, हमारा बेटा डॉक्टर बन गया है, हमारा बेटा अमेरिका जा रहा है। अरे जब आपका बेटा अमेरिका जा रहा था ना, उसी समय देश पांडे का दूसरा बेटा गले तक कीचड़ में डूबा, कीचड़ साफ कर रहा था। क्या क्या कहा इसने? पिताजी इनसे कहें, कहने पता है हमारी जमीन कहां शुरू होती है और इनकी जमीन कहां खत्म होती है? हैं? जमीन का सर्वे नंबर क्या है, कितना टैक्स देना पड़ता है? मेरी जमीन, मेरी जमीन। ए मुंबई कर देश पांडे, सागौन खाली धरण गांव कर देश पांडे की जमीन में हो गए हैं, आपकी और चंदू काका की जमीन में देखा ये अनाज और सब्जी ही बो जाते हैं। और पिताजी लोग घुमा फिरा कर पूछते हैं कि आप अपना हिस्सा बेचते हो क्या और चंदू काका का हिस्सा बेच रहे हो क्या? मुझे पता है इसके पीछे कौन है, वो सालू के, उसे वहां उसे फैक्ट्री खोल ली है। मुझे पता है इसके पीछे किसका हाथ है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और आप भी ना समझी मैं हां मत कर दीजिएगा पिताजी।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीपक, हमेशा की तरह जितने सहज आप हैं उतनी ही सहजता से आपने संवाद की अदायगी की। अब आपका उद्देश्य क्या है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय करने के बाद? आप रंगमंच की फील्ड में जाना चाहेंगे या फिर वही रजत पट की तरफ?
0: मैं अभिनय करना चाहता हूँ, मैं रंगमंच भी करूंगा, लेकिन मेरा मैं फिल्मों में काम करूं।
1: अच्छा अच्छा,
0: क्योंकि मैं फिल्मों में काम करने के लिए इस फील्ड में आया था। मुझे फिल्मों में काम करने का बहुत शौक है।
1: चलिए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं अभी से देते हैं। हमारे उन श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे जो रंगकर्मी हैं, शुरुआत कर रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि दीपक जैसा वो भी अपने गाँव का, अपने शहर का, अपने मोहल्ले का नाम रोशन करें? तो हमें ये बताएं दीपक कि ऐसे कौन से व्यक्तित्व हैं जिनसे मिलकर आपको बहुत ही अच्छा लगा?
0: सर मुझे इम्तियाज अली सर को मिलके बहुत अच्छा लगा, वो बहुत हम्बल थे।
1: उनसे मुलाकात कैसे हुई वो बताइए हमें।
0: वो भारंगम में वो आए थे।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो स्टूडेंट के लिए इतनी मतलब लाइबिलिटी होती है कि वो जाके मिल ले।
1: हाँ।
0: तो वो मैं उनसे जब मिला तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने खुद से मुझसे हाथ मिलाया और उनने मुझसे बात की और फिर मैंने उनसे ऑटोग्राफ लिए तो उन्होंने एक मतलब साइन करके दी और लिखा कि तुम इसे मुंबई लेकर आना, और वो बहुत ही हम्बल थे।
1: क्या
0: तो
1: बात है।
0: उनको देख के मुझे सर लगा।
1: वॉइस रंगमंच में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो इन एक साल में वॉइस के ऊपर क्या क्या बुनियादी काम करवाए गए आपसे, हमें शुरुआत से बताइए।
0: वॉइस के ऊपर बहुत बुनियादी काम करवाए गए, उसके लिए सबसे पहले आपकी बॉडी को तैयार किया गया।
1: वो कैसे?
0: उसके लिए वार्म अप एक्सरसाइज होती है, मूवमेंट की एक्सरसाइज होती है, मैं जॉय मिताई सर आते हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज कराते हैं, एक मुन करके मैम आती है वहाँ पे, वो वॉइस के टीचर आते हैं, वो बहुत काम करवाते हैं वहाँ पे।
1: किस प्रकार का काम?
0: जैसे रॉबिन सर की हमारी क्लास लगी तो रॉबिन सर ने 5 रेजोनेटर बताए, सरगम के बारे में बताया, और बज्जी करके एक टीचर आई थी राडा से, उन्होंने बताया,
1: राडा से लंदन से,
0: लंदन अच्छा, से टीचर आई थी तो उन्होंने बताया यहाँ से कैसे बोलते हैं, यहाँ से मतलब जो 5 रेजोनेटर होते हैं, नाक से कैसे बोलते हैं, सिर से कैसे बोलते हैं।
1: दीपक, हमारे उन श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे आप जो रंगकर्म के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसे एक बड़े मंच पर आना चाहते हैं, उनके लिए वो कैसी तैयारी करें जिससे वो भी दीपक के साथ काम कर सकें?
0: सबसे पहले तो वो खुद पर विश्वास रखें, लगन से काम करें, जो भी वो काम करते हैं ईमानदारी से करें, और चाहे कोई भी रोल हो, बैक स्टेज भी काम करते हैं तो जितना ईमानदारी से करते हैं आप, तो फिर आपको रंगमंच उतना ही देता है। आपके साथ कोई कुछ भी करे, आप ईमानदार रहें, और आप ईमानदार रहते हैं तो आपको चीजें मिलती हैं, आपके साथ अच्छा ही होता है। इस फील्ड में आपका बहुत अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है।
1: क्या बात। तो श्रोताओं, अच्छे बनने की, अच्छे इंसान बनने की, नेक इंसान बनने की हम राह पकड़ें तो निश्चित रूप से सफलता हमारे कदम चूमेगी, ऐसा कहा भी जाता है। और दीपक, जिन्होंने अभी अभी हमसे बातचीत की और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में, अपने अनुभव के बारे में, आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें हमारे व्हाट्सएप पर जरूर बताएं। और दीपक, आप हमारे स्टूडियो आए और बहुत ही अच्छे अनुभव हमसे साझा किए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।

आकाशवाणी सागर, ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 8:45 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम संगीत सरिता के अंतर्गत कुछ गैर फिल्मी गीत और संगीत। पहला जो गैर फिल्मी गीत गजल आपको सुनवा रहे हैं, विनोद सहगल की आवाज में है, मदन पाल ने शब्द रचना की है, संगीत निर्देशन जगजीत सिंह का है।

श्रोताओं, ये गजल अभी आपने सुनी सुमिता चक्रवर्ती की आवाज में। शहरयार ने इस गजल को लिखा था, संगीत जगजीत सिंह का था। अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में कृष्ण अदीप का लिखा हुआ ये गैर फिल्मी गीत, संगीत निर्देशन जगजीत सिंह का है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीत सरिता। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजने को है, बस कुछ ही पलों में सुनिएगा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस अंतराल पर जाने से पहले जो गीत आपने सुना वो था धमाल चार। इस फिल्म से संजू राठौड़ की आवाज सी रश्मि विराग और संजू राठौड़ ने इस गीत को लिखा, तनिष्क बागची और संजू राठौड़ का संगीत। और आइए अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं भूल भुलैया 3। इस फिल्म से आदित्य रिखारी और तुलसी कुमार की आवाजों में ये गीत है। आदित्य रिखारी ने इसे लिखा है और संगीत है लीजो जॉर्ज का।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
5: हो तो

0: रहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं पति पत्नी और वो, इस फिल्म वो दो। पति पत्नी और वो दो इस फिल्म का गीत अब आप सुनेंगे बादशाह कृष मोंदल, किशोर मोंदल और इप्सिता की आवाजों में। इस गीत को लिखा है बादशाह और कुणाल वर्मा ने, बादशाह हितेन और देव सदाना का संगीत।

यारियां दो। इस फिल्म का गीत अब सुनिए यो यो हनी सिंह नेहा कक्कर की आवाजों में। इस गीत को लिखा खलीफ और यो यो सिंह ने, संगीत खलीफ और यो यो सिंह का।

ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं चित्रलोक कार्यक्रम लेकर। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये पारंपरिक गीत जुग जुग जियो। इस फिल्म से कनिष्क सेठ और कविता सेठ की आवाजें हैं और इस गीत को संगीत से सजाया है कविता सेठ और कनिष्क सेठ ने।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी बुलबुल, कोई और बकरदार लग गया तेरे पीछे क्या।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: इसने कहा है किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गीतकार की जिसने मुंबई की शहरी चमक दमक के बारे में ये बात कही।

0: दोस्तों आनंद बख्शी की गीतकारी का संसार इतना विस्तृत है कि आधे घंटे के एक कार्यक्रम में उनकी गीतों की दुनिया को समेटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम अपने तरीके से याद करेंगे इस अनमोल गीतकार को जो 21 जुलाई 1930 को जन्मा था रावलपिंडी में। वो रावलपिंडी जो बंटवारे के बाद सरहद के उस पार रह गई, तब ये लड़का 17 बरस का था और उसकी प्यारी रावलपिंडी उससे छूटी जा रही थी। इस रावलपिंडी की याद में बहुत बरस बाद आनंद बख्शी ने लिखी एक नज्म, और ये नज्म हमें फोन पर सुना रहे हैं उनके बेटे राकेश बख्शी।
1: जब पार्टीशन हुआ था, बख्शी साहब 17 साल के थे, तो उन्होंने 17 साल जिंदगी जीती रावलपिंडी में, तो दूसरा देश बन गया, लेकिन वो थी बख्शी साहब की जन्मभूमि।

0: उन्होंने वहां जन्म लिया था, वहीं गाने सुने, वहां उधर का कल्चर उन्होंने पिया और खाया, जिसकी वजह से वो गीतकार भी बने आगे जाके। पंजाबी कल्चर, फोक कल्चर, सूफी गाने, जब यहाँ हिंदुस्तान आए तो उन्होंने एक नज़म लिखी, उस नज़म का नाम है रावलपिंडी, और तकसीम के ऊपर है उनकी फीलिंग्स, और उन्होंने इस खूबसूरत पोएम को इस तरीके से लिखा जैसे कि एक आदमी एक बिलेवड के लिए लिखता है या कोई जो छूट जाता है जिंदगी में पीछे, उन्होंने उस हिसाब से ये पोएम लिखी है। तो मैं ये नरेट करना चाहता हूँ दो अपने बख्श फैंस के लिए।
1: जरूर।
0: सनहा ये मेरी जिंदगी सह गई, सनहा ये मेरी जिंदगी सह गई, मैं यहाँ आ गया वो वहां रह गई, कुछ ना मैं कर सका, कुछ ना मैं कर सका, देखता ही रह गया, कुछ ना वो कर सकी, देखती रह गई। लोग कहते हैं तकसीम सब हो गया, लोग कहते हैं तकसीम सब हो गया, जो नहीं बट सकी चीज वो रह गई। याद पिंडी की आती है अब किस लिए, याद पिंडी की आती है अब किस लिए, मेरी मिट्टी थी जहलम में वो बह गई। इन जमीनों ने कितना लहू पी लिया, ये खबर आसमानों तलक है गई। रास्ते में खड़ी हो गई सरहदें, रास्ते में खड़ी हो गई सरहदें, सरहदों पे खड़ी बेबसी रह गई। दे गई घर गली शहर मेरा किससे, दे गई घर गली शहर मेरा किससे, क्या पता किससे बख्शी वो क्या कह गई।
1: क्या बात है।
0: ये तकसीम के ऊपर बख्शी आपका जो दर्द था कि अपनी जन्मभूमि को पीछे छोड़ के आना पड़ा,
1: जी जी,
0: माँ की तरह, इस पोएम से ही जाहिर होता है।
1: जी, आनंद बख्शी एक जमाने में फौज में थे, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगता था, वो तो फिल्मी दुनिया में बतौर गायक शामिल होना चाहते थे, लेकिन ये हो न सका। मुंबई में उन्होंने संघर्ष किया और किस्मत ने उन्हें गीतकार बना दिया। सन 1962 में आनंद बख्शी को पहली कामयाबी मिली, फिल्म थी मेहंदी लगी मेरे हाथ। सन 1965 आनंद बख्शी की कामयाबी का एक बेमिसाल साल, क्योंकि तब आई जब जब फूल खिले, इसी बरस आई हिमालय की गोद में।

ये वो दौर था जब आनंद बख्शी बाकायदा एक कामयाब गीतकार बनने के रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रही थी। सन 1967 में फिल्म मिलन के गाने उन्होंने लिखे।

0: आनंद बख्शी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। वो रेल से सफर कर रहे थे, एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकी थी और गांव का एक व्यक्ति मिलन फिल्म का उनका एक गाना गा रहा था। आनंद बख्शी का दिल बहुत खुश हुआ और उन्हें ये एहसास हो गया कि अब वो पक्के गीतकार बन चुके हैं, क्योंकि अब वो जन जन तक पहुंच चुके हैं। आनंद बख्शी के कुछ गानों की कहानी फोन पर सुना रहे हैं उनके बेटे राकेश बख्शी।
1: शुक्रिया यूनुस जी, और मैं इतना खुश हूँ कि मैं विविध भारती के हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं हर चैनल सुनता हूँ। मैं हिंदुस्तान में जितने चैनल हैं, बाहर के भी जो चैनल हैं, मैं ऑनलाइन सुनता हूँ। और मैं अभी भी कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई चैनल नंबर वन है भारती जो है, दैट इज एक्चुअली द रीडर्स डाइजेस्ट ऑफ रेडियो।
0: राकेश जी, बख्शी साहब की याद का दिन है और पूरा देश जो है वो उन्हें याद कर रहा है, संगीत के चाहने वाले, गीतों के चाहने वाले। हम चाहते हैं कि कुछ गानों के बनने की कहानियां आप सुनाएं।
1: बख्शी साहब का एक गाना था एक फिल्म में, जहाँ पर विलेन और वैम्प ने हीरो को बांध कर रखा हुआ है और उसका फैसला नहीं हो रहा कि क्या किया जाए इसके साथ। तो बख्शी साहब को एक लाइन याद आई, उन्होंने अपने स्कूल में पढ़ी थी या कहीं कहानी में पढ़ी थी, कि जब इंडिया वॉज

0: रीड बाय अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर ने हरमा हमला किया था हिंदुस्तान पे, तो तब जब किंग पोरस को कैद कर दिया गया, डिफीट कर दिया गया, तो तब ये सवाल उठा था कि क्या किया जाए उनका, उनको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो उनको ये बात याद आई और जो राजकोट साहब की फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश में जो सिचुएशन बनी, तो उन्होंने फिर वो वहां यूज किया, मार दिया जाए छोड़ दिया जाए बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए।
1: क्या बात है, मतलब देखिए इतिहास से रेफरेंस लेके और उन्होंने उसे एक मॉडर्न गाने में बदल दिया।
0: यस यस,
1: एक तो अच्छा तो हम चलते हैं की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है।
0: हाँ, वो बख्श साहब और जब सेटिंग चल रही थी गाने की तो काफी वक्त निकल गया, मेरे ख्याल में एक दो दिन कुछ बात नहीं बनी, सेटिंग हो रही थी लक्ष्मी जी प्यारलाल और बख्श साहब और डायरेक्टर साहब जीवन प्रकाश जी, और कुछ बात नहीं बन रही थी, कुछ मुखड़ा नहीं बन रहा था, कुछ अंतरे नहीं बन रहे थे, कुछ बन ही नहीं रहा था। जब तक मुखड़ा नहीं बनेगा फिर अंतरे नहीं निकल सकते, अंतरे मुखड़े से ही निकलते हैं। तो बड़े परेशान हो गए, फड़प हो गए वो लोग, और उन्होंने बख्शी साहब ने उठा, या बख्शी साहब उठे या लक्ष्मी जी उठे, उन्होंने कहा भाई बहुत हो गया, अच्छा तो हम चलते हैं। बख्शी साहब ने पूछा फिर कब मिलोगे, तो जब वो जवाब देने लगे तो बख्शी साहब ने उनको रोक दिया, उन्होंने कहा कि रुको रुको बैठो बैठो अभी मुझे एक आइडिया आया। और वहीं उन्होंने वहीं थर्ड लाइन लिखी, जब तुम कहोगे, और उससे गाना गाने की शुरुआत होती है, अच्छा तो हम चलते हैं फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे, आधी रात को, हाँ हाँ आधी रात को, कहाँ वही जहाँ कोई आता जाता नहीं।
1: क्या बात,
0: तो ये वहां से वो बात निकली।
1: अच्छा,
0: गाना है अपना, एक बार सुभाष भाई साहब आए थे घर पे
1: जी,
0: उन्होंने बख्श साहब से कहा कि मैंने नई नई फिल्म बना रहा हूँ तो मैं आपको आज आके स्टोरी सुनाता हूँ। तो स्टोरी सुनते सुनते वो रात हो गई और खाने का वक्त हो गया, और खाना वाना खाया, और जब खाना खा के जब हाथ धोने चले गए बख्श साहब वॉश बेसिन पे, तो हाथ धोते धोते बख्श साहब ने सुभाष जी भाई साहब को कहा कि एक यार मुझे एक लाइन याद आ रही है, तेरी फिल्म का नाम सौदागर है, मुझे एक लाइन याद आ रही है, सौदागर दिल लेकर दिल देकर। वॉश बेसिन में हाथ धोते धोते वो लाइन उनके दिमाग में आ गई। एक और मुझे बड़ा अच्छा किस्सा याद आ रहा है कि एक बार वो बख्श साहब कहीं गाड़ी में जा रहे थे बम्बई, उनके शायद फादर आ रहे थे भार्गव से, तो वो बम्बई सेंट्रल स्टेशन जा रहे थे उनके अपने पिताजी को लेने के लिए, उनके साथ एक दोस्त था उनकी गाड़ी में, उनके दोस्त अपने दोस्त की गाड़ी में गए थे क्योंकि तब उनके पास पैसे नहीं थे अपनी गाड़ी खुद की गाड़ी खरीदने के लिए। तो दोस्त की गाड़ी में जा रहे थे और बख्श साहब बैठे थे बाजू में और दोस्त चला रहे थे, तो वहीं पर रस्ते में कहीं बख्श साहब ने गाड़ी रोक दी, बोला रुक रुक रुक कुछ लिखना है मुझे, और उन्हें एक कागज पे लिखा कि गाना है अपना मेरे हम सफर का, राह पर इस मोड़ पर कहीं तुम
1: किसी राह पर किसी मोड़ पर कहीं चल न देना छोड़कर।
0: हाँ, तो वो एक आगे ट्रक जा रहा था और ट्रक के पीछे लिखा था मेरे हम सफर।
1: ओहो,
0: तो वहां से उन्होंने ये लाइन पकड़ी के गाड़ी निकल जाएगी, सड़क निकल जाएगी, लोग निकल जाएंगे, मेरा साथ नहीं छोड़ना मेरे हम सफर।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: दोस्त है उनका हरी मेहरा, उनके दोस्त हैं जिनके रिकॉर्ड की शॉप थी, अभी भी है स्वीट, तो रोज डेली जाते थे पान खाने खार स्टेशन के बाहर। तो एक बार पान खा के वहां से निकले और वहां पर एक स्कूल है खार में, सेक्रेड हार्ट स्कूल, स्कूल के स्कूल से आगे आ रहे थे एसपी रोड की तरफ, और सामने से कोई बहुत खूबसूरत लड़की चलती हुई आ रही थी, तो वहीं पर बख्श साहब ने वापस गाड़ी रोक दी, बोला रुक रुक रुक मुझे कोई लिखना है। तो उन्हें कुछ अपने उनके पास एक, जब उनके पास किताब नहीं रहती थी ना, तो वो अपना 555 सिगरेट पैकेट पे पीछे लिख देते थे लाइने बंसे जो भी था, क्योंकि पेपर तब तो मोबाइल नहीं था, कुछ लोग हमेशा पेपर लेके नहीं घूमते थे, पेन तो हमेशा रहता था जेब में, राइटर है तो हमेशा पेन लेके घूमते थे। तीन चार छह महीने बाद जब एक बार ट्रायल हुआ फिल्म का, तो बख्श साहब ले गए अपने दोस्त को ट्रायल के लिए, चलते को नई फिल्म दिखाता हूँ लगने वाली है दो हफ्ते में, वो चले गए फिल्म देखने। और जब वो गाना आया तो बख्श साहब ने बोला याद है तेरे को, हमने वो खूबसूरत लड़की को देखा था, तूने क्या कहा था, तूने कहा था क्या रूप पाया इस लड़की ने, तो मुझे वहीं पे लाइन स्ट्राइक की थी और मैंने ये गाना लिखा था तब, कि रुक तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कहीं हम से ना हो जाए।
1: ओहो, तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी जिंदगी की घटनाओं को उन्होंने गीत का रूप दे दिया। कोई एक घटना बताइए, एक फादर के तौर पर कैसे थे बख्शी साहब, पिता पुत्र की कोई घटना याद कीजिए।
0: हजारों घटनाएं हैं, दो घटनाएं जो हैं, एक तो जब मैं छोटा था तो हमेशा रात को लेट आते थे काम से, क्योंकि 70s में बहुत पॉपुलर हो गए थे बख्श साहब, 64 के बाद बहुत पॉपुलर हो गए थे, जब जब पुलगुल रिलीज हो गई थी, मिलन आ गई थी, आराधना आ गई थी, तो ही वॉज वेरी पॉपुलर, वेरी इन डिमांड, तो लिखते भी थे 10-15 घंटे डेली, 10 घंटे लिखना डेली, फिर रात को फिर दोस्तों की पार्टी, फिल्मी पार्टी में जाना, इवेंट्स में अपना अवार्ड फंक्शन में जाना, काफी बार लेट आते थे रात को, हम सो जाते थे, बख्श डैडी आए घर पे, लेकिन हम तो सोए हुए रहते थे, एक दो बजे आते थे, कभी तीन बजे आते थे। तो जब मैं बहुत छोटा था, उनकी आदत थी, वो हमेशा आके सर को या बदन को हमारे थपथपाते थे, यू नो, लाइक जैसे माँ कैसे लोरी गाती है बच्चे के लिए, वो हमेशा वो बच्चे को थपथपाती हाथ से, यू नो, हाथ के हाथ ऐसे लगा के टप टप करके।

0: तो वो हमेशा रात को आके ही शुड डू दैट फॉर टू मी एंड टू माय ब्रदर टू माय सिस्टर. लेकिन उनके हाथ लगाने से मैं जाग जाता था. जब मैं जाग जाता था वो शर्मा जाते थे और वो चले जाते थे, फिर वो फिल्म नहीं करते थे, वो छोटा सा कोई लोरी सुनाना या कुछ. तो मुझे याद है कि मैं हमेशा फिर जब आते थे अगर मैं उठ जाता था तो मैं आंख बंद ही रखता था ताकि उनको पता चल जाएगा तो चले जाएंगे. मैं आंख बंद करके उसका मजा लेता था उनकी उनकी लोरियों का. दूसरी मुझे एक बात याद है कि जब शायद कॉलेज में था तो मैंने नाश्ता किया और अंडा छोड़ दिया, अंडा नहीं खाया मैंने. तो मेरे डैडी ने कहा खेती को पता है अंडे का भाव क्या है? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, होगा 50 पैसे 25 पैसे जो भी होगा, 1 रुपया होगा, आई डोंट नो. तो ईश्वर की जब तुम छोटे थे ना, तुम दो भाई दो बहने छोटे थे, तुम्हारी माँ एक अंडा 4 टुकड़े में बांट के तुम चारों को देती थी और खुद नहीं खाती थी ताकि तुमको न्यूट्रिशन मिले. तुम्हारी माँ ने ये प्राइस पे किया एक अंडे का, बिकॉज माय फादर वाज स्ट्रगलिंग फॉर एटलीस्ट 10-15 इयर्स ऑफ हिज करियर इन द बिगनिंग.
1: बिल्कुल.
0: तो तब उनके पास शायद अंडे के भी पैसे नहीं होते थे, तो एक ही अंडा हम चारों को बांटना पड़ता था फैमिली में. तो मेरे फादर ने कहा था कि ये है अंडे की कीमत, तो ये तुम्हारी माँ ने जो अंडे की कीमत दी है ना, वो अंडे की कीमत कभी नहीं भूलना, फूड कभी वेस्ट नहीं करना, खाना कभी वेस्ट नहीं करना.
1: क्या बात है,
0: भले वो एक अंडा ही हो.
1: क्या बात है.
0: इसी बात मुझे बड़ी अच्छी याद है कि एक बार मैं मेरा कॉलेज में किसी के साथ अफेयर हो गया
1: जी,
0: और वो मेरे डैडी की पसंद की नहीं थी. तो मेरे डैडी कहा कि मिलना जुलना सब बंद करो, ये सब लव वव नहीं चलता, अभी पढ़ाई का वक्त है, पढ़ाई करो. तो मैंने झट से एकदम रूडली उनको एकदम कॉन्फिडेंटली जवाब दिया. मैंने कहा अरे आप तो आनंद बख्शी हो, आपने तो अभी लव स्टोरी में गाना लिखा है, आपने प्रताप में गाना लिखा, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे, आपने लव स्टोरी में कुमार गौरव ने कितने अच्छे गाने लिखे हैं, आपने बॉबी में इतना अच्छा गाना लिखा है, आपने रॉकी फिल्म में इतना लव स्टोरी लिखी, अच्छी गाने लिखे, आपने एक दूसरे के लिए कितने अच्छे लव स्टोरी गाने लिखे, अब अभी मेरी वक्त मेरा वक्त आया तो आप बोल रहे कि यू कैन नॉट मीट हर, अभी तुम्हारा रोमांस का टाइम नहीं है, पढ़ाई का टाइम है
1: जी.
0: तो मेरी डैडी ने कहा कि वो मेरा शौक नहीं है, वो मेरा काम है. काम में और शौक में फर्क होता है. वो मैं जो गाने लिखता हूँ लव स्टोरी के लिए तुम्हारे लिए नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ क्योंकि वो स्टोरी की डिमांड होती है, कैरेक्टर की डिमांड होती है, एक सिचुएशन की डिमांड होती है, वो मैं अपनी फैमिली के लिए लिखता. अब तुम्हारा वक्त है स्टडीज करने का, लव स्टोरी में पढ़ने का अभी तुम्हारा वक्त नहीं है.
1: क्या बात है. अच्छा अब मुझे बताइए कि बख्शी साहब की याद में आप कौन सा गाना समर्पित करना चाहेंगे अपनी तरफ से विविध भारती पर?
0: गाने तो बहुत हैं, हजार है. जैसे कि क्या होता है, हर गाना आपको एक जब आप किस मूड में हो उस मूड के हिसाब से आपको कोई गाना अच्छा लगता है.
1: मैं समझ सकता
0: हूं. मुझे याद है एक बार मेरा हार्ट ब्रेक हो गया था, मेरा अफेयर डावल डोल चला गया था, यू नो विद अ गर्ल, कॉलेज में था शायद, वो मेरा अफेयर टूट गया था, मेरा बड़ा दिल का बड़ा मुझे दर्द हुआ था. तो मैं कम से कम 2 हफ्ते एक ही गाना सुनता रहा, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया था. तो मेरे डैडी ने झट से एक बार रूम में आके पूछा क्या हो गया तेरे को, 2 हफ्ते से एक ही गाना सुन रहा है मेरा. कुछ लफड़ा उड़ा नहीं हो गया लड़की के साथ कुछ. तो मुझे बहुत पसंद है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत चाहेंगे हम अगर तू संग है. क्योंकि काफी वक्त हम जिंदगी में शायद अगर हमारे साथ कोई नहीं होना हम हार मान जाते हैं, तो अगर कोई हो साथ में, माँ हो, बाप हो, लवर हो, बिलवेड हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, तो हर एक इंसान को कुछ ताकत चाहिए. तो इसलिए वो गाना मुझे आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट.
1: क्या बात है?
0: ऐसा ही गाना है बख्शी साहब का जो मेरे ख्याल में किसी की भी जिंदगी में काम आ सकता है. और ये गाना है फिल्म अंगार का, मुश्किल में है कौन किसी का, मुश्किल में है कौन किसी का, लेकर अपना नाम कभी तुम खुद को आवाज दो.
1: क्या बात है, क्या बात है.
0: काफी बार क्या होता है, हम जब मुश्किल में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो हम दूसरों पर डिपेंड करते हैं, दोस्तों पे, रिलेटिव्स पे, लेकिन काफी बार ये सब भाग जाते हैं लोग, कोई साथ नहीं देता. तो बख्शी ने ही कहा था मुझे कि कभी भी तुम जिंदगी में तकलीफ में होगे तो खुद को याद करो हमेशा, दुनिया अपने आप साथ चलेगी तुम्हारे.
1: क्या बात है.
0: लेकिन पहले खुद को याद करो
1: जी,
0: किसी और को याद करने से पहले, भगवान को याद करने से पहले भी पहले खुद को याद करो. तो ये लाइन आई थिंक ये गाना किसी की भी जिंदगी के काम आ सकता है. मुझे लगता है यही एक अच्छा गाना हो सकता है जो किसी की जिंदगी के काम आ जाए.
1: जी राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, बख्शी साहब की याद का दिन और आपने ये लम्हे हमारे लिए यादगार बनाए, बहुत शुक्रिया.

0: समझो इस राज को, मुश्किल में है काम किसी का।
1: आनंद बख्शी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने हर तरह के, हर सिचुएशन के गीत लिखे हैं, और कमाल की बात ये है कि बातचीत को गीतों में बदल देने का हुनर है आनंद बख्शी के पास।
2: सुनो, कहो, कहा, सुना,
3: कुछ हुआ क्या?
2: अभी तो नहीं।

0: फिल्मी दुनिया के तमाम संगीतकारों के साथ आनंद बख्शी ने काम किया और कोई ऐसा रेडियो स्टेशन दुनिया में नहीं होगा और शायद दुनिया में कोई ऐसा हिंदी रेडियो स्टेशन नहीं होगा जहां से आनंद बख्शी के गाने नहीं बजते होंगे।
1: रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना।

फिल्मी दुनिया के युग बदलते चले गए, संगीतकारों की पीढ़ियां बदलती चली गईं और आनंद बख्शी का काम बदलता चला गया। जहां उन्होंने चित्रगुप्त के साथ लिखा तो आनंद मिलिंद के साथ भी लिखा, एसडी बर्मन के लिए गाने लिखे तो आरडी बर्मन के लिए भी लिखे, रोशन के लिए लिखे तो उनके बेटे राजेश रोशन के लिए भी लिखे, कल्याण जी आनंद जी के लिए लिखे तो विजू शाह के लिए भी लिखे। यानी संगीतकारों की ही कई पीढ़ियों के साथ बख्शी साहब ने काम किया। फिल्म फेयर पुरस्कारों की बातें करें, सन 1979 फिल्म अपनापन

बख्शी साहब 30 मार्च 2002 को इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए अपने हजारों गाने, और उन गानों का गाने सुनने वाली जनता से अभूतपूर्व लगाव।